मैंने सुना है कि जब लोग प्रे करते हैं या जोर से हंसते हैं, रोते हैं या फिर किस करते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं। क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ दिल से महसूस की जाती हैं।

ये तो सच्ची बात है दोस्तों कि मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, माँ के बराबर तो कोई हो ही नहीं सकती है इस दुनिया में। और इसको बहुत अच्छी तरीके से गाया गया है, दर्शाया गया है जुबिन जी की आवाज़ में। एंड एज सून एज आई स्टार्टेड प्लेइंग दिस सॉन्ग आई रिसीव्ड लॉट्स ऑफ मैसेजेस टू से यू नो दैट दिस वॉज सच अ ब्यूटिफुल मेलोडी। जाकिरा, सुरेश महाराज, आयला, ऑल ऑफ दिस पीपल।

0: What a beautiful, iconic, melodious song this was. Tabassum was the title of the song. Of course, it's a soulful, romantic track from the upcoming film Batwara, 1947. This was composed by A.R. Rahman with lyrics by Javed Akhtar and vocals by, of course, you guessed it right, it's Sonu Nigam ji or Heer. What a beautiful song, isn't it? It just made the mood in the studio, and I hope it did the same to you on this Hindi edition of Geetanjali. Stay tuned. This is Lotus FM.
1: The Hollywood Bets exclusive Spinner Zone Get Prize Drops gives you the chance to win your share of 2.5 million rand in cash and prizes. Bet 2 rand or more on selected pragmatic play slots every Monday, Tuesday and Thursday from 12:30 to 10:30 p.m. Make every drop count to catch the perfect prize. Join the spinning spectacular now. T's and C's apply. Hollywood Sportsbook is a licensed betting operator. No persons under the age of 18 years are permitted to gamble. Winners know when to stop. South African Responsible Gambling Foundation toll-free counseling line 0800 006 008 or WhatsApp HELP to 076 675 0710.
0: आप सभी का फिर से स्वागत है हिंदी भाषा कार्यक्रम में जिसका नाम है गीतांजलि और इस कार्यक्रम को हम अपने लोटस एफएम के अंतर तरंग द्वारा आपके लिए प्रस्तुत करते हैं हर सोमवार को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक. ऑफ कोर्स इट्स टाइम नाउ फॉर दी वाक्यांश बट रिमेम्बर टुडेज मुहावरा is 9 din chale adhai kos. 9 din chale adhai kos. If you know the meaning, send me a message, a WhatsApp message, or better, a voice note, 10 seconds or less, on 0716137803 right here on the Lotus FM WhatsApp line. And of course, do remember, we are going to present to you two songs of one actress that has really marked herself as a bold actress in Bollywood. So if you do know the answer for that one, you have a few minutes from now up until the end of the Vakyansh, which is the Hindi lesson, to guess who I am talking about. And we will be dedicating two songs to her in this edition of Geetanjali. So stay tuned for all of that and many melodious Hindi songs.
2: You are listening to Geetanjali, Mondays 6 to 7 p.m. Lotus FM.
0: Welcome back. Getting straight into feature number one, which is the Vakyansh. Alright, so hum aaj ka jo Vakyansh hai, usko is tarah se aapke saamne prastut kar rahe hain. Virasat keval ateet ki dharohar nahi, bhavishy ki zimmedari bhi hai. Yehi hai aaj ka Vakyansh. Ek aur baar dohra rahi hoon. Virasat keval ateet ki dharohar nahi, bhavishy ki zimmedari bhi hai. Heritage. Because it is Heritage Month, हमने इस particular वाक्यांश को चुना है, तो हम इसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि heritage is not merely a treasure from the past, it is also a responsibility toward the future. This वाक्यांश or phrase highlights that preserving heritage is our duty towards the generations yet to come. मतलब यह वाक्य जो है विरासत के गहरे अर्थ को दर्शाता है. सामान्यतः लोग विरासत को केवल पुरानी इमारतें या फिर स्मारक या फिर कलाकृतियों या फिर परंपराओं के रूप में देखते हैं, लेकिन यह कथन बताता है कि विरासत का महत्व इससे कहीं अधिक व्यापक है. यह वाक्य बताता है कि हमारी विरासत संस्कृति, परंपराएं, ऐतिहासिक स्मारक और प्राकृतिक संसाधन केवल अतीत की यादें या धरोहर नहीं है. उन्हें सुरक्षित रखना और आने वाले पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है. इनफैक्ट जिम्मेदारी भी है. और यदि हम इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो भविष्य की पीढ़ियां अपनी पहचान और इतिहास से वंचित हो सकते हैं. इसलिए हमें अपनी विरासत को संभाल कर रखना चाहिए। भावार्थ यही है कि जो हमें पूर्वजों से मिला है उसे सुरक्षित रखकर अगली पीढ़ियों को सौंपना हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो दैट वॉज दी वाक्यांश फॉर टुडे। विरासत केवल अतीत की धरोहर नहीं भविष्य की जिम्मेदारी भी है। सो इट एसेंशियली टेल्स अस दैट हेरिटेज कल्चर ट्रेडिशंस एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स दीज आर यू नो जस्ट नॉट like they're just not treasures from the past, but they are our responsibility towards the future, and we must preserve and protect them so that the future generations can learn from them and benefit from them. Remember that if we fail to conserve and preserve our heritage, the future generations may lose an important and integral part of their identity and history, and therefore we can say that history is not just legacy of the past but also a responsibility of protection and passing it on to our future generations. Well, umeed karti hu ki aaj ka jo vakyansh humne aapko bataya wo aapko पसंद आया होगा, और आप अगर इसको यू नो याद कर सकते हैं, विरासत केवल अतीत की धरोहर नहीं भविष्य की जिम्मेदारी भी है। आप मुझे एक छोटा सा ध्वनि संदेश भेज सकते हैं स्टूडियो व्हाट्सएप लाइन पे 0716137803। इस छोटे से अंतराल के बाद फिर से आपके समक्ष गीतांजलि में हाजिर होती हूँ।
2: यू आर लिसनिंग टू गीतांजलि
0: Lotus FM. Welcome back. This is Geetanjali. और एक दो लोगों ने गेस करने की कोशिश किया कि आज जिनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो कौन है वो अभिनेत्री, और एक दो जवाब मुझे मिले। आयला जी बता रही हैं वो है जीनत अमान, और जेन नायकर बता रही हैं कि वो है रेखा। लेकिन क्या मैं आपको बताऊं कि ये दोनों नाम नहीं है। ऑफ कोर्स दीज आल्सो वे आइकॉनिक एक्ट्रेसेस ऑफ द एरा, दे वर क्वाइट बोल्ड, दे वर क्वाइट फॉरवर्ड, बट आज जिनके बारे में मैं बात कर रही हूं, बता दूं या नहीं आज जिनके बारे में मैं बात कर रही हूं उनका नाम है राधिका आप्टे। हाँ जी बिल्कुल, राधिका आप्टे के बारे में हम बात करेंगे। पहले उन्हीं के फिल्म से इस गाने को सुनिए, आज से तेरी।

तेरा हो गया. इट हैज बिकम योर्स. आज से तेरा हो गया. इट हैज बिकम योर्स फ्रॉम टुडे. तो यही है दोस्तों राधिका आप्टे जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है. ऑफकोर्स वी विशिंग अ वेरी वेरी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू राधिका आप्टे फ्रॉम टीम लोटस FM. और इसीलिए हमने उस गाने को आपके समक्ष प्रस्तुत किया, आज से तेरी. ऑफकोर्स राधिका आप्टे वॉज बॉर्न ऑन द 7th ऑफ सेप्टेम्बर इन तमिलनाडु, एंड शी इज नोन टू बी extremely talented. Let's get into knowing her a little bit. One of the most versatile actresses in Indian cinema. वह उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने mainstream Bollywood और independent cinema दोनों में अपनी अलग पहचान बनाई है. She is known for choosing unconventional roles and portraying strong but layered characters. She was born in Vellore, Tamil Nadu, and later grew up in Pune. She studied economics and mathematics. She is a trained Kathak dancer, and I think both of these together helped her shape her artistic journey. Radhika Apte ko vishesh banati hai unki yah khubi ki ve chunauti purna aur alag tarah ke bhumikaye निभाने से कभी भी हिचकिचाती नहीं है. वो अक्सर ऐसे किरदार चुनती हैं जो गहरे और जटिल और जो समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं. उनकी फिल्म फॉर एग्जांपल फोबिया, पास्ट, अंधाधुन और पैडमैन, जो आपने अभी अभी गाना सुना आज से तेरी, वो पैडमैन से था. और इन्होंने उनके अभिनय के विविध रंगों को दर्शाया है और साबित कर दिया है कि वो हर तरह के किरदार को बहुत अच्छी तरह से निभा सकती है और वो उनमें खुद भी अपने आप को डाल सकती है उन कैरेक्टर्स में. तो यही है इनकी खूबी. और वही तमिल सुपरस्टार फिल्म कबाली में उनके जो अभिनय ने उन्हें दक्षिण भारतीय दर्शकों को उनके पॉपुलैरिटी जो हम बोलते हैं वो भी दिया गया है. और संक्षेप में हम ये बता सकते हैं कि राधिका आप्टे उन अभिनेत्रियों में से हैं जो पारंपरिक भूमिकाओं तक सीमित नहीं रहती हैं, बल्कि अपने साहसपूर्व एक कैरेक्टर के साथ वो एक दमदार अभिनय के लिए जानी जाती है. इन द स्ट्रीमिंग एरा ऑफ कोर्स राधिका बिकेम अ फेमिलियर फेस वर्ल्ड वाइड थ्रू ऑल द स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर हर ब्यूटिफुल परफॉर्मेंसेस, एंड दीज परफॉर्मेंसेस हेल्प्ड रीडिफाइन हाउ इंडियन एक्ट्रेसेस कुड रीच अ ग्लोबल ऑडियंस थ्रू सच स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स. और मैं अगर आपको बताऊं तो राधिका आप्टे उन अभिनेत्रियों में से हैं जो केवल स्टार नहीं बल्कि एक जो हम बोलते हैं ना सीरियस परफॉर्मर वो मानी जाती है. एंड शी इज अप्रिशिएटेड मोर फॉर हर क्राफ्ट दैन फॉर हर ग्लैमर, एंड क्रिटिक्स ऑफन प्रेज हर फॉर ब्रिंगिंग ऑथेंटिसिटी टू एवरी रोल दैट शी प्लेज. आइए एक और गाना सुनते हैं जिनमें राधिका आप्टे ने किरदार निभाया है, और ये गाना है साइबो फ्रॉम शोर इन द सिटी ऑन गीतांजलि.

तो दोस्तों, इसी मधुर सुरों की अंजलि के साथ हम विदा लेते हैं आपसे गीतांजलि में. और अब जुड़े रहिए टॉक एट सेवन विद कृषांगी राधे, और जहां बातें होंगी और दिल की और हालत भी बहुत सी होंगी वहां पे, और हर घंटे की ताजा खबरें आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सुरेशन. और उसके बाद आप बिताएंगे अपने कीमती वक्त केशव दास के साथ. मैं हूं आपकी अर्चना श्रीधर. फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार और शुभ रात्रि. मैं आपसे कल मिलूंगी संगीत नलिमु, जो एक तेलुगु भाषा कार्यक्रम है. तब तक आप सुनते रहिए हमने तुमको देखा.